0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका घोर से गरुण दाना बहरू नागमा रावण नासिका संचल भाई।

गई माँ पिका माजी ले जुजु चिरा कहा मुहिले बिराए भानी कि मेरा दुई पाऊ माता ठोकी दे जन्म बापला तेरो आनी तो करना दुरी तो हमें को बतुआ।

0: California. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: नीलकमल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को साधारण सभा सम्बन्धी सूचना।
1: यस नीलकमल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को भदौ 11 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार 2082-83 को आर्थिक कारोबार पछि 2083 असोज 27 गते 13 वार्षिक साधारण सभा हुने

0: उमेर मंदिर को दर्शन गरौ पुण्य कमाऊ। दोलाखा को कालिंचो गाउँपालिका वडा नम्बर चार बाबरे जाने रोड मुनी बंचारे नरीभुई को बीच में रहेको भूमे मंदिर दर्शन गरी पुण्य कमाउनुहोस्। इस मंदिर में दर्शन गर्नाले रोग कष्ट निवारण होने विश्वास रहिआएको छ। अगुवा रणवीर थामी, मंदिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोरे थामी, सचिव दलवीर थामी। अन्य जानकारी को लागि संपर्क नंबर 9861906466। भूमे मंदिर कालिंचो गाउँपालिका वडा नंबर चार बाबरे जाने रोड मुनि बंचरे नरी भुई को बीच में।
1: यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो।
2: यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

विशाल श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में सादर निमंत्रणा। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण, पितृमोक्ष, सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री डिलीराम गौतमज्यूको मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्बत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्बत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 98 5 12 45 779, 98 49 924 09, 98 44 39 94 13, 98 41 96 89 45, 98 44 46 56 50। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: नमस्कार
1: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम मैलेमा थप्लो 7.5 बाट म बदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल भाद्र शुक्ल पक्ष सन् 2026 सेप्टेम्बर 25 तारीख आश्विन 9 गते शुक्रबार आज अनन्त चतुर्दशी इन्द्र जात्रा पनि हो।
0: अब स्तुति गरौं।
2: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।